0: यू फॉर वॉचिंग मुझे कैसे पता ना चला एंड गो सब्सक्राइब टू MB म्यूजिक
1: एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन
2: एंड दिस इज अ गाना ओरिजिनल सो गो हियर इट ऑन गाना